0: सर जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो?
1: कहा मुस्कुरा रहे? नहीं नहीं मुस्कुरा रहे,
0: मुस्कुरा तो रहे हो।
1: नहीं मुस्कुरा रहे।
0: लो लो
2: अनंत।
3: अरे क्या हुआ
2: अनंत?

0: Sir? दाऊद तो दबोच गया सारी?
1: नहीं दद्दा, उड़ाने दो प्यार की पतंग, वक्त आने पर पीछे लड़ाएंगे।

0: Hey, thank you किसके लिए? I hope you're not sleepy.
1: मुझे रात को नींद नहीं आती.
0: Okay.
1: Born insomniac. Sleeping pills बना. So now impossible. But really अक्षय, मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी कब हंसी.
0: अच्छा, अब आपको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगने लगा?
1: बिल्कुल नहीं.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ